0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
3: पंजाबी लहरां प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं,
4: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं,
3: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं,
4: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं,
3: चौड़ियां छातियां वाले गभरुआं नूं,
4: चरखा कतदियां ते पिंग

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478 905-799-1478 रॉयल ऑटो सेंटर किसी ने भी अगर कार वैन एसयूवी लेना टॉप टॉप टॉप दा नाम एक है वो है एरन मिल्स एक्यूरा एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला अते करण शर्मा नु कॉल करो नंबर वन सर्विस नंबर वन रेट्स प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना होवे एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 905-828-5800 ते कॉल करो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਨਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 647-504-1557 ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 416-477-2040 416-477-2040

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली। याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251।
1: कैनेडा विच प्योर पंजाबी खानिया आते स्वीट्स लई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट
0: डाइनिंग टेकआउट केटरिंग लाइव ट्रक ले आके थोड़ी कार केटरिंग दी सर्विसेज दें देने
1: वेज नॉन वेज केटरिंग ताजिया स्वादलियां मिठाइयां ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट
0: आज ही विजिट करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा प्योर पंजाबी 647-338-9172 कॉल करो गुरजीत रंधावा 647-338-9172।
2: चंगा ट्रक ते वधिया जॉब लैण लई किथे जावां?
3: तां फिर तू क्वालिटी लॉजिस्टिक क्वालिटी ट्रक सेल वालियां कोल जा।
4: 12 महीने कम पाओ
3: ते नाले चंगे डॉलर कमाओ।
0: क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी। वधेरे जानकारी लई क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरां नूं कॉल करो
1: 416-717-2929
0: 416-717-2929 क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 इटोबिको।

0: 799 8877 sofastudio.ca. थैंक यू जी।
1: ट्रक कादा लिया जदो वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा
2: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
3: पहुंचो 5530 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
1: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
2: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
1: 905-459-5533
2: 905-459-5533 ते
1: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
4: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-5594-6478355294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

0: Locoro 647-504-1557.
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
3: JS Home Improvement ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਬੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ $500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਓਪਨਰ ਲਿਫਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ $350 ਤੋਂ, ਫੁੱਲ ਗਰਾਜ ਡੋਰਸ $349.99 ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ JS Home Improvement, ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਨ ਬਿਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। 905-7

0: फिर याद आंदे ने कासा फर्नीचर वाले, जो है सब तो पुरानी ते भरोसेमंद फर्नीचर दी दुकान। जी हाँ, इत्थे तुहानू मिलदा है कस्टम सोफा, लैदर सोफा, सोफे, डबल बेड, मैट्रेस ते पूरे घर दा सारा फर्नीचर, ओ भी वाजिब रेटां ते। सो आज ही पहुंचो कासा फर्नीचर, 120 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड ब्रैम्पटन। इना दी एक होर लोकेशन है सोफा मार्ट, 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन। ज्यादा जानकारी ले कॉल करो परंजीत होरा नु 905-803-8056, 905-803-8056।
1: कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी यानी कि CRA बिना किसी कोर्ट जजमेंट तो तुम्हारे बैंक अकाउंट को सीज या फ्रीज कर सकते हैं। तुसी CRA दे कर्जे नो लीगली माफ करवा सकते हो। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल DCAP
2: 905-908-2499-905-908-2499 और विजिट 411debt.ca। सम कंडीशंस अप्लाई।
3: ऑटो ओनर्स, क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है? अगर आपके पास जी या G2 लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए।
4: ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें, जो आपको अच्छा प्रीमियम, ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे। अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनवाएं और अप टू 30% तक बचाएं। ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 6476562810, that is 6476562810।
5: ड्राइव कर रहे हो? शोनो एंजॉय कर रहे हो? कुछ बोल रहे हो?
6: ड्राइविंग लाइसेंस?
5: नो।
6: पुलिस ऑफिसर?
5: नो नो।
6: ट्रैफिक लाइट्स?
5: नो।
6: देन
7: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकती है ऑटो, होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
7: की तुसी कनाडा विच स्टूडेंट वीजा दे उत्ते वर्क परमिट ते आए होए हो या तुसी कैनेडियन सिटीजन या PR होल्डर हो, अपने दोस्त, रिश्तेदार ते मित्रां नूं अगर विजिटर या टूरिस्ट वीजा ते कनाडा बुलाउणा चाहुंदे हो तां परखिया ते भरोसे वाला नाम पंजाब विच सब तो वध सक्सेस रेट दे नाल ईजी वीजा, विजिटर वीजा कनाडा दा लगवा के दे रहे हन। वधेरे जानकारी लई ईजी वीजा 9592200200 9592200200 ते अज ही कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट।
9: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
10: ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬਨ 55-60 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
7: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Mountain Ash and Bovedda intersection, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699
11: ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? 11:30 ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ?
12: ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
11: ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਕਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ?
12: ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬੜੋ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਸੇਵਿੰਗ 100 ਡੋਲਰ ਦੀ 905-458-1331 ਸਟੇਪਲ ਬੁਸ਼ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤੇ ਸਟੇਪਲ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ 905-458-1300।
13: छोटा मोटा कर्जा या करवानी है कोई भी घर विच रेनोवेशन, होम एक्विटी वीजा ले सकते हो। साधारण क्रेडिट कार्ड नालों किते कट ब्याज, आसानी नाल उपलब्धता।
7: आज ही होम एक्विटी वीजा लेने दे लई कॉल करो 905-671-2000 905-671-2000। कुछ शर्तें लागू होती हैं।
14: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200।

0: समझ के कह रहे हैं छोड़ दे सब। किसी को तोड़ के लिए आगे आना पड़ेगा।
1: और जो आगे आएगा उसके अपनों का क्या?

0: 8481213।
1: पूरे 40 साल हो गए अपने ब्याह नु, फिर किथे सेलिब्रेट करन दा इरादा है?
2: मेरी मन्नो आपा पिंड ना चलिए।
1: धर्म नाल आता तू मेरे मन दी गल ही कहती है, पर इन्नी छेती टिकटां कित्थों मिलणगियां?
2: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल तो अपने साथ वर गई साथ है उन्हां दा, अपने क्लाइंट्स दे नाल पिछले 40 साल तो
3: बेदाग सर्विस। गिल इंटरनेशनल ट्रैवल,
2: क्वालिटी सर्विस, वधिया रेट्स ते बेस्ट डीलिंग है उनादी पहचान। इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया दे किसे भी कोने च करना होए ट्रैवल,
3: सर्विंग कनाडा नेशनवाइड।
2: 9056718400 और 9057968800 और विजिट giltravels.ca।
4: पंजाबी बाय नेचर उन्हां वालों आईकॉन इवेंट स्पेस इन मिसागा तुहाडे लई पेश कीता जांदा है। बहुत ही शानदार एलीगेंट बैंकुट हाल है। तुसीं अपने फंक्शन नूं एक बहुत ही खूबसूरत यादगारी माहौल अंदर मनाओ जी। फूड नंबर 1, सजावट नंबर 1, लोकेशन नंबर 1। 100 to 1200 मेहमानां दा स्वागत करनगे आईकॉन इवेंट स्पेस, 3rd 87 डिक्सी रोड इन मिसागा। लक्की वालिया जां मोनू वालिया जी नूं घंटी खड़का लो। 905-965-2631 9652631। मॉर्गेज सॉल्यूशन दे गुरप्रीत समरा जी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसीं अपनी मॉर्गेज बी सी लैंडर तो हटा के ए लैंडर नाल करवाउणी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है, कॉल 905-460-9099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन ताकि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार रुपए नो बनाउण लई चाहीदे ने। मकान लैण वेले इसदा भी अरेंजमेंट कीता जांदा है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो। 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम यूनिट 32। 905-460-9099
2: 9099 905-460-9099 905-460-9099 905-460-9099 905-460-9099 905-460-9099 905-460-9099 905-460-9099 905-460-9099 905-460-9099 905-460-9099 905-460-9099 905-460-9099 905-460-9099 905-460-9099 905-416-2942859
3: जशन 416-294-2857
2: 416-294-2857
3: जशन टेंट्स, हर फंक्शन नो देओ एक शानदार लुक।

0: बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन हायर कर रहे ने क्रॉस बॉर्डर एजी ड्राइवर्स, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, डेडिकेटेड ऑटो पार्ट्स, डेली होम रन्स, सेम ट्रक ते ट्रेलर्स, लगभग 3000 माइल पर वीक मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कुशावा, इटोबिको अते बॉल्टन। जे तुहाडे कोल भी है वैलिड एजी लाइसेंस, क्लीन CBOR ते एब्स्ट्रैक्ट, US बॉर्डर एलिजिबिलिटी ते फास्ट कार्ड, ता आज ही एवरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन नो कॉल करो 9058462229, एक्सटेंशन है 4, या फिर 9053348222, यानी 905-846-2229 ते, या फिर कॉल करो 905-334-82, एक्सटेंशन है 4।
1: रूपा बराड़ 5 वकीलां दी वड्डी एक्सीडेंट स्पेशलिस्ट टीम है, एक्सीडेंट तो बाद तुहाडे हक्कां लई खड़दे ने 5 वकीलां दी महार।
2: This is AM 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: संसार दे कोने कोने विच वसदे पंजाबियों तक विरसे दी खुशबू पहुंचाउंदा ए है वतनों दूर रेडियो। दिस इज वतनों दूर रेडियो।
4: वतनों दूर रेडियो विच तुहाडा सारिआं दा दोस्त सुखी निजर तुहाडा सारिआं दा सत्कार करदा ते सिजदा करदा कनेडा विच मेहनत करके तरक्की कर रहे सारे परिवारां दा, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ। ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ।
3: ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets si pal de vecho. Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne. Ja tusi visa services di pal de vecho. Puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: Aaj khush to baat ho gaya
6: tha. Oh ta hona hi hai jadon tino video da no freezing no buffering ala 4K ultra high quality IPTV box hove. Ai nakda banda hi hai.
5: Aaj mere paas bill hai, property hai, bank balance hai, bangla hai, gaadi hai.
6: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ?
7: ਚਲ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ?
6: ਓ ਭਾਜੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
8: ਡਾਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
6: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-13 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
9: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
10: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
9: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
11: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसां विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा, दाल, चावल, नाले सब्जी ते दूध घ्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड। 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
12: मित्रां दे जंक्शन ते
13: हो केड़े जंक्शन?

0: हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ली हुणे कॉल करो 905-564-6444
0: 905-564-6444

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: 0415576745 1557

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1478 Royal Auto Center Punjabi Lehra ya chalo AM 530

0: वाह क्या बात है। 0075 हाँ जी वेलकम।
1: हाँ जी रवि जी की हाल है सर।
0: वधिया जी वधिया सर किवें हो की बनदा?
1: बस ठीक ठाक है जी ऑल गुड। मैं ना एक क्वेश्चन सीगा मेरा एक्चुअली ते मैनू नहीं पता लाइक वैसे तो मैं इत्थे पूछ लेना जे किसे नू पता होवे। तुसी देखिया होना के ब्रैम्पटन दे विच ना काफी सारे जिवें हुण ओह पेड पर भी दे रहे हैं सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वाले भी जिवें घाह कट्टो पार्किंग तुहाडी जिहड़ी प्रॉपर होनी चाहीदी है साइड वाक ते नहीं होनी चाहीदी। मेरा इस पे क्वेश्चन सी कि तुसी नोटिस करिया होना पुराने नवे बहुत सारे घर ऐसे हैं जिथे की हुंदा है कि लेट से कोई डिटैच घर है ओहदे बाहर ड्राइववे बनया होया है दो कारां दा उस तो बाद साइड वाक है ते दो कारां दा उस तो पिछे ड्राइववे बनया होया है साइड वाक तो पिछे। बट मोस्टली बिल्डर्स ने की कीता उहनूं प्रॉपर तां दित्ती नहीं जगह बस ओनी क दित्ती है कि जिथे कारां दे टायर आ जांदे है लेकिन जेड़ा तुहाडा बंपर है या बैक जेड़ा कार दा हुंदा ओह हैंग करदा रहिंदा है ड्राइववे दे उत्ते या रोड दे उत्ते सिर्फ टायर आंदे आ उहदे उत्ते यू नो लाइक टायर साइड वाक ना टच नहीं करदे कार दे टायर आ जांदे लेकिन बंपर हैंग करदा रहिंदा जे किसे भी लाइक तुहाडे सरोते नूं
0: तुसीं तुसीं जे तुहाडी गड्डी माड़ी मोटी भी हैंग कर रही है रोड दे उत्ते या साइड वाक दे उत्ते फिर तुसीं उत्ते पार्क नहीं कर सकदे।
1: ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਿਕੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਈ
0: ਪਰ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਜੇ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਡਰਾਈਵੇ ਆ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ।
1: ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਚ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ
0: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਏਰੀਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ